रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। मेरे बहन भाइयों, बच्चों, बच्चियों, सिर्फ एक हदीस आपको सुनाता हूं, सारी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे और आप मुआशरे के बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, अरबों एजा कानत फीक मा दर्रक मा फातक मन दुनिया, कि मेरी उम्मत चार बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। हिफ्ज अमानतन, सिद्क हदीसन, हुस्न खलीकतन, इफ्फतन फी तौमतन। चार बात फरमाया कि मेरी उम्मत किसी को धोखा न देना, सुबहान अल्लाह, किसी को धोखा न देना, बद्दयानती न करना। दूसरा फरमाया सिद्क हदीसन, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुना कर सकता है, दो नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो झूठ ना बोलो, सच बोलो अल्लाह के वास्ते। तीसरी बात फरमाई हुस्न खलीकतन, अपने अखलाक अच्छे कर लो। और अच्छे अखलाक का एक लफ्ज है बर्दाश्त, लोगों की बर्दाश्त करो, नेगेटिविटी बर्दाश्त करो। चौथी बात आपने फरमाई इफ्फतन फी तौमतन, कि रिज़्क हलाल कमाओ, हराम ना कमाओ, हराम चीजों का कारोबार ना करो, उससे कभी चैन नहीं आता।
0: करक और उसके मजाफात में अजान जोहर का वक्त हो चुका है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।

क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: Τώρα είμαστε με τη τάρτα που γεγιάζει από τα σαπάρ σε τέτοια έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρταρ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρταρ. Μάρα είμαι ζή μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε δαστερανγκε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρ βάχτε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλάνα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβολ σε ρικρέτη. Οστούλ κούρβολα να χωστούλ δει.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ